हम आकाशवाणी बुधवार से आपसे मुखातिब हैं FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। सभी समयीन को हमारा खुलूस भरा आदाब। समयीन, आज शुक्रवार है, शख्समत 1948 के जेठ महीने की 8 तारीख, बमुताबिक 29 मई 2026 ईस्वी। समयीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के ठीक 7:56 हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज होता है।

हम आकाशवाणी बुधवार से बोल रहे हैं 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर, मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू खबरनामा रिले किया जाएगा। समय रिले का चंद लम्हों के लिए इंतज़ार कीजिए।

0: इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की जानकर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार

0: बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड

0: जज ओटुशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21

0: उनको होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and

0: हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। BJP ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा BJP की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब BJP का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के BJP सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नवीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। BJP के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वहां मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे 23 सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला अहल

0: सरकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मॉनसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुलअक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुलअक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188

0: रन बनाए। दूसरा टी20 बैन अलाक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबार मंजर आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबार की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धरमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबार ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबार की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रोमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: एक सौ एक मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का बदरवास स्टेशन। समयीन 8:45 हुए हैं, अब पेशे खिदमत हैं चंद नातिया कलाम। आगाज में समात फरमाइए हमदेवारी ताला महमूद रियाज की आवाज़ में।

ई जर्नल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 42 साल, PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 45 साल और PWBD शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 47 साल रखी गई है। उम्मीदवारों को दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरखास्त की फी जर्नल OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹750 रखी गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए दरखास्त की फीस माफ रखी गई है। दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://sbi.co.in। समय वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, http://sbi.co.in। समय ये था रोजगार खबरनामा। हम आकाशवाणी बुधवार से बोल रहे हैं 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। सामईन, अब पेश खुलासा रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:20 पर आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी।

छह बजे हिंदी में खबरें और 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

6:10 पर आप समाप्त करेंगे प्रोग्रामों की जानकारी। 6:15 पर आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें व तबसरा रिले किया जाएगा।

8:30 पर आप समाप्त करेंगे गोजरी मौसकी, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में खबरें और 9:30 पर करंट अफेयर प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

समीन ये था खुलासा। रात 10 बजे तक रिले व नाश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों का। हम आकाशवाणी के बदरवा स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। समीना पेश है भारतीय सेना को समर्पण गीत, जिसके लिखारी गायक और संगीतकार हैं कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: हम आकाशवाणी बुधवार से बोल रहे हैं 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर. 9:20 होने वाले हैं. चंद ही लम्हों में आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी. समय रिले का इंतजार कीजिए.

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ बड़ले खबर च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबर कन्ने में पवन वर्मा। ऑपरेशन शेरोवली दे तहत सुरक्षा बले रजौरी जिले च आतंकवादी दे ठिकाने पर नमें सिरिया कारवाइयां आरंभियां न। उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा होरें हालात दा जायजा लैता। दो शा त्रै आतंकवादी दे इलाके च फसे दे होने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जून महीने दौरान जम्मू वाले सिविल सैक्टरेट च बक बक मंत्रियों की मौजूदगी बारे कार्यक्रम का ऐलान कर दिता है। सोए दिए छुट्टियों दौरान यात्रियों के रश कन्ने निबड़ने लिए उत्तर रेलवे आसिया जम्मू राजधानी ते कटरा नवी दिल्ली ट्रेनें कन्ने बाधू डब्बे जोड़ने जा रहे हैं। 227 बरे आली मरदमशुमारी के तहत लोगों की जागरूक बनाने के मकसद कन्ने कल जम्मू च डोगरी गीत जारी किया गया। मौसम विभाग ने अज जम्मू कश्मीर दिए कई थारे पर हल्की बरखा ते तेज बहा चलने की भविखबानी की है। उन खबरें की तफसील कन्ने विजय बजाज।
1: शुक्रिया पवन। ऑपरेशन शेरोवली दे छेमें ध्याड़े कल सुरक्षाबलें रजौरी जिले दे डोरीमल इलाके दे घने जंगलें च छप्पे दे संदिग्ध आतंकवादियों पर भी हमला कीता। सेना दे जवानें संदिग्ध आतंकवादियों दी छप्पने आली थारें गी निशाना बनाया ते भारी गोलीबारी ते ग्रनेड लांचरें कन्ने हमला कीता। आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब इस इलाके च इक आतंकी कमांडर सने दो शा त्रै पाकिस्तानी आतंकवादी छप्पे दे न। सेना दी उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हुंदी आसिया कल हालात दी समीक्षा करने दे मगरा इस अभियान च होर तेजी आई ऐ। सुरक्षाबलें इस इलाके च तपाशी अभियान बरोबर जारी रखे दा ऐ। पिछले शनिवारें डोरीमल गंभीर मुगलां बेल्ट च आतंकवादियें ते सुरक्षाबलें बश्कार गोलीबारी होई ही की जे इस इलाके च किश आतंकवादियें दी मौजूदगी बारै खुफिया जानकारियां मिलने मगरा इक सांझी टीमै इस अभियान गी शुरू कीता हा। फौज दी राइजिंग स्टार कोर दे जनरल आफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत होरें वीरवारें पठानकोट पंजाब ते जम्मू कश्मीर दे कठुआ जिले दा दौरा लाया ते खित्ते च तैनात बलें दियें कारवाइयें सरबंधी तैयारियें दी समीक्षा कीती। सोशल मीडिया दी इक पोस्ट च राइजिंग स्टार कोर ने आखेआ जे अपने दौरे दौरान जीओसी होरें बलें दी सराहना कीती। आखने योग गल्ल एह ऐ जे राइजिंग स्टार कोर कठुआ सांबा ते जम्मू जिलें दे किश हिस्सें दे परिचालन क्षेत्रें दी निगरानी करदा ऐ जिंदे च जम्मू कश्मीर दा अंतर्राष्ट्री बन्ना भी शामल ऐ। जम्मू कश्मीर सरकारै औंदे जून महीने जम्मू आले सिविल सैक्ट्रेट च उपलब्ध रौह्ने आले मंत्रियें दे नाएं ते तरीकें दा ऐलान करी दित्ता ऐ। जीएडी पासिया जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब खुराक सिविल सप्लाई ते उपभोक्ता मामलें दे मंत्री सतीश शर्मा औंदी पहली थमां 5 जून तोड़ी सिविल सैक्ट्रेट जम्मू च उपलब्ध रौह्ङन। इस्सै चाल्ली जल शक्ति विभाग दे मंत्री जावेद अहमद राणा होरें गी 8 थमां 12 जून जिसलै कि सेहत ते डाक्टरी शिक्षा मैह्कमे दिए मंत्री सकीना इत्तू होरें गी 15 थमां 29 जून तोड़ी उपलब्ध रौह्ने लई आखेआ गेआ ऐ। तोआई उप मुक्खमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी भी 22 थमां 30 जून तोड़ी जम्मू सचिवालय च उपलब्ध रौह्ङन। उप मुक्खमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें कल कालीधार च जारी सुंगल सुरंग परियोजना दे निर्माण कम्मै दा निरीक्षण करदे होई जमीनी सतह पर इनें कम्मै दी रफ्तार ते म्यार दा जायजा भी लैता। चौधरी होरें कम्मै दी मट्ठी रफ्तार माड़े गुण

0: वत्ता मानकें उपर तय प्रक्रियाएं दी कथित खिलाफवर्जी पर चैंता बुझदी होई आखिया जे इह परियोजना 2025 दी अपनी समय सीमा गी पहले गै पार करी गई है। उनें कम तोड़ चाड़ा करदी एजेंसी गी निर्देश दिता जे उह सुरक्षा संबंधी नियमें दी सख्ती निपालमा करदी होई इस परियोजना गी मित्थे गेदे समय दे अंदर अंदर सबूरा करवाना यकीनी बनान। उप मुक्खमंत्री होरें आखिया जे जिसलै तोड़ी इह परियोजना पूरी नहीं हुंदी उसलै तोड़ी इक वैकल्पिक सिड़क संपर्क तैयार कीता जा। उनें इस मौके पर नशहरा ते उहदे आले दुआले दे इलाकें च जारी होरने विकास कम्में दी भी समीक्षा कीती। सोहे आली छुट्टियें दौरान यात्रियें दे बधे दे रश गी दिखदे होई उत्तर रेलवे दे जम्मू डिवीजन ने दऊं रेल गड्डियें च वाधू कोच जोड़ने दा फैसला लैता ऐ तां जे यात्रियें गी सखाल होई सके। औंदी 6 थमां 12 जून तोड़ी जम्मू तवी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन नंबर 12426 दे कन्नै आरजी तौरै पर इक वाधू थर्ड एसी कोच जोड़िया जाग। इस्सै चाली 6 थमां 13 जून तोड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा न्यू दिल्ली एक्सप्रैस ट्रेन नंबर 04082 दे कन्नै इक स्लीपर क्लास कोच जोड़िया जाग। जम्मू रेलवे दे वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल होरें दस्सेया जे इनें हीलें दे कन्नै होर मते यात्रियें गी कन्फर्म टिकटां हासल होने च मदद होग। एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे हो। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै पवन वर्मा।
1: 20 तों 27 बरे आली मरदमशुमारी लई इनें दिनें जम्मू कश्मीर च आपूं अपना नां आनलाइन दर्ज कराने आली सैल्फ एनुमरेशन दी प्रक्रिया चला करदी ऐ ते नियमतपूर्ण समय पर कल प्रेस क्लब जम्मू च सांस्कृतिक तौर पर बड़े मते महत्व आला जागरूकता गीत जारी कीता गया जिहदा शीर्षक ऐ मरदमशुमारी च लखायो डोगरी। एहदा मकसद मरदमशुमारी दौरान अपनी मातृ भाषा दे तौर पर डोगरी लखाने लई लोकें दा दिल बधाना ऐ। इस गीत गी मन्ने परमन्ने दे साहित्यकार ते गायक साहिल बडियाल होरें लिखे दा ऐ ते गाए दा भी ऐ। इस मौके किट गी अग्गे भाषण दिंदे होई पद्मश्री कन्नै सम्मानित मोहन सिंह सलाथिया होरें भाषाई विरासत ते सांस्कृतिक पंछान दी सांभ संभाल दे महत्व पर लोह पाई। जम्मू कश्मीर लई जनगणना दे प्रभारी अमित शर्मा होरें लोकें गी अपील कीती जे ओह् आपूं आनलाइन अपना नां दर्ज कराने आली प्रक्रिया च सक्रियता कन्नै हिस्सा लैन। उनें आखेआ
2: अच्छा इतिहासिक दिन है कि एक मरदमशुमारी उपर एक डोगरी गाना इन्हें रिलीज किया कि डोगरी की प्रचार प्रसार करो और डोगरी अपनी भाषा लिखो। जेडे भी ऑप्शंस आंदे ने लोकें जरूर ओदे च करना चाहिए। कम से कम एक ते मैं उम्मीद रखा जिले सुपरवाइजर ते एन्यूमरेटर जिले तुहाड़े घर आंदे ने ते प्योर डोगरी च गल करो, बच्चे की भी आखो डोगरी च करन, सब तो बड़ा ते ओही पहचान है तुहाड़ी।
1: तुहाई लोकें गी इस संबंधे च जागरूक बनाने आस्ते सरबंधित सरकारी अधिकारियों आसिया कई कार्यक्रम का सरिस्ता किया जा रहा है। इस बारे आकाशवाणी समाचार कन्ने गल करदे होई मोटर गड्डी संबंधी महकमे दे एक एहलकारे गलाया
3: सेल्फ इनुमरेशन सर्च करना गूगल स्टेट थोड़ा ये आ जाना स्क्रीन और तुम्हें स्टेट सेलेक्ट करनी है जम्मू कश्मीर पता है कैप्चा आना कैप्चा पाना वेरीफाई करके पूरे इंडिया का डाटा जरा कलेक्ट हुआ है जी। फैमिली दे सोर्सेस के उस फैमिली दी मतलब बिलो पॉवर्टी है उसी अपलिफ्ट करने वास्ते गवर्नमेंट ने सीरीज स्कीम अपना के इससे डाटा दिखाना क्या कोई नौकरी करने वाले किन्ने बिना नौकरी है सारा डाटा जरा कलेक्ट।
1: उधमपुर जिले दे पंचैरी च केंद्री विद्यालय दी मंजूरी मिलने कन्नै मकामी लोक खुशी जारी कीती ऐ। लोकें इस इलाके च इसगी इक बड़ी उपलब्धि करार दिता ऐ। साढ़े जिला संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब इस स्कूल दा मकसद दूर दरेडें ते ग्राईं इलाकें दे बच्चें गी गुणवत्ता आली शिक्षा उपलब्ध करवाना ऐ। एह्दे कन्नै बेहतर स्कूली सुविधा लई बाहर जाने दी लोड़ घट्ट होई जाग। आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई पंचैरी दे DDC दे साबका सदस्य जसवीर सिंह होरें आखेआ जे इस परियोजना गी लैने लई बक्ख-बक्ख प्रशासनिक ते सरकारी स्तरें पर लगातार जतन जारी रहा। उनें इस परियोजना गी हकीकत च बदलने लई सरकार प्रशासन शिक्षा महकमे ते सबने हितधारकें दा धन्नवाद कीता। उनें आखेआ
4: केंद्रीय विद्यालय पंचारी की क्लासिफिकेशन का आर्डर आया है। बहुत बड़ी उम्मीद थी हमारे जो दूरदराज के बच्चे जो जिनमें अच्छी प्रतिभा तो है लेकिन वो बेहतर मंच जो है वो नहीं मिल पाता, तो ये बहुत बड़ा अवसर है और इससे बहुत बड़ा मंच उनको मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा इसके लिए। बहुत बड़ी बात है क्योंकि दूरदराज के एरियाज में एक तो अच्छी एजुकेशन के लिए बड़ा जद्दोजहद रहती है आम लोगों में, और आम लोग हालांकि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती तो उनको माइग्रेट करना पड़ता। तो ये 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल है।

0: जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है।
1: यूजी दाखले 2026 ताईले विद्यार्थियों की सूचित करने च मदद देने लई जम्मू कश्मीर दे उच्च शिक्षा महकमे ने दाखले पोर्टल पर अस्थाई कॉलेज आवंटन ते कट ऑफ रुझाने की सक्षम कीता है। महकमे ने आवेदकें की सलाह दी है जो खीरी सीट अलॉट होने शा पहले ओ अपनी मर्जी दे सब्जेक्ट्स की समीक्षा करन ते फी अपडेट करन। डायरेक्टर कॉलेजिस जीएनके शेख एजाज बशीरो ने आख्या जे ए रुझान छड़े संकेतात्मक न ते अजे दाखले की गारंटी नहीं है। मौसम विभाग ने अज जम्मू कश्मीर च मती सारी थारें उपर बरखा गरज चमक ते तेज ब्हा करने दी भविक्खवाणी कीती है। विभाग ने कल 3 मई थमां लेइयै 2 जून तक कर किश थारें पर खास करियै दोपहरी दे बाद आले समय दौरान हल्की बरखा ते गरज चमक दी उम्मीद जताई है। बसनीकें गी सलाह दित्ती गई है जे ओ तेज ब्हा दे चानचक बरखा दे दौरान सोगे सतर्क रौह्न। उआं खित्ते च अगले किश दिनें दौरान मौसम दा मिजाज अस्थिर रही सकदा है ते इस अवधि दौरान केई थारें उपर रुकी रुकी बरखा बरी सकती है।
2: अखीरै च खास खास खबरां इक बारी परतियै। आपरेशन शेरूवली दे तैह्त सुरक्षाबलें रजौरी जिले च आतंकवादियें दे ठिकाने पर नमें सिरेया हमले कीते न। उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा होरें हालात दा जायजा लैता। 2 शा 3 आतंकवादियें दे इलाके च फसे दे होने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकारै जून महीने दौरान जम्मू आले सिविल सैक्टरेट च बक्ख बक्ख मंत्रियें दी मौजूदगी बारे कार्यक्रम दा ऐलान करी दित्ता है। सोए दियें छुट्टियें दौरान यात्रियें दे रश कन्नै निबड़ने लई उत्तर रेलवे आसेआ जम्मू राजधानी ते कटड़ा नमीं दिल्ली ट्रेनें कन्नै बाद्धू डब्बे जोड़े जा'रदे न ते 2027 ब'रे आह्ली मरदमशुमारी दे तैह्त लोकें गी जागरूक बनाने दे मकसद कन्नै कल जम्मू च डोगरी गीत जारी कीता गेआ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होगा।

हम आकाशवाणी के बद्रवास स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। 9:30 हुए हैं। सामईन, आइए अब सुनते हैं कश्मीरी मौसीकी। आगाज़ में पेशे खिदमत है कश्मीरी नात आबिद बशीर की प्यारी सी आवाज़ में।

0: सबके लिए समाजी सिक्योरिटी अटल पेंशन योजना।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब इस योजना से 8,85,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो महाना अटल पेंशन के अलावा योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक की शाख से राबिता कायम करें।
3: समईन, अब आपको महसूस करवाते हैं नसीमुल हक के गाए इस कश्मीरी गीत से।
4: जो गाजोर किला

सामईन, अभी आपने अल्लाह रखा की आवाज़ में रसूल मीर का लिखा गीत सुना। सामईन, आइए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे पेश कर रहे हैं मोहम्मद एजाज और कलाम है गुलाम हसन गौहर का।

मोहम्मद एजाज के गाए गीत के साथ ही सामईन आज के प्रोग्राम का वक्त पहुंचता है अपने इख्तिताम को। हम आकाशवाणी बदरवास से बोल रहे हैं FM 101 MHz पर। सामईन 10 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम शाम 5 बजे तक रिले किए जाएंगे। सामईन रिले का चंद लम्हों के लिए इंतज़ार कीजिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिस्नर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इतनी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने समय डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इतने समय गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध हमें

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम, खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम? खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी।
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?

0: मैडम प्यार तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
1: जी।
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और महफिल मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ मैं।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना?
1: बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है।

0: चांदी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही हैं, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि
0: क्या
1: जब
0: करें
1: हमारे
0: दीदी, देखो
1: हाँ
0: क्या करें
1: राजस्थान
0: दीदी,
1: में जब
0: मतलब
1: आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है फिर।
0: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और
0: बिल्कुल
1: सब
0: दीदी
1: चीजों
0: बिल्कुल।
1: का।
0: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
0: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं, और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेट का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ, चना, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी, जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया, सफ्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं और विविध भारती से सुन सुनकर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुनकर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं,
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी,
0: जी, जी। तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है, लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासा से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम मूवी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ, हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदाय

0: के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे।
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुने गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है
0: सुनते हैं आपकी
1: आपको।
0: पसंद का ये गीत। कभी तू

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2466-2867-0288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

चंदा की डोली इस एल्बम से गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। नुसरत बद्र ने इसे लिखा और सोनू निगम का संगीत।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाव में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स, कौन सी फिल्म से, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है।

साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें जिंदगी में, हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना। मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तेफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में, और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाजार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है, और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घुमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है, और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है, और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहां पर, जहां पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूँ तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका

मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूं इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिग्गी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है, जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहां पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहां पर मिलते हैं, और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं। स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है? आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्तकोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशतकोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राजसत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे

0: पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
1: 1905 के अंतिम चार महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वाकबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
0: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने

0: के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया।

0: यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा!

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराक के काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: सहेली, हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे। हाँ
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं।
1: हाँ
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी, मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत।
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है और
0: जी
1: मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और
0: जी
1: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। तो मैंने
0: सिर्फ नाड़ी
1: नाड़ी
0: देखकर आप रोग का पता
1: देखी।
0: लगा लेती हैं।
1: हाँ हाँ नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं। ज्यादा
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, कि जो बच्चा चल नहीं
1: हाँ
0: सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप
1: अब
0: कोई दवाइयां देती हैं या?
1: नहीं दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा,
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है, इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं भी, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हो हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा।
1: उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते। मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी। हाउस
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: वाइफ हूँ
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं
1: जी
0: ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े, तो
0: जी।
1: बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका
1: जी
0: पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं? तो
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में
1: जी
0: अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा
1: जी
0: काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से
1: जी भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे। हेलो
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि
1: जी,
0: गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।
0: ये
1: अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। हाँ
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहां से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज उसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: माँ, माँ।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवास दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थपरता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही

नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथ ही सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहां यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे।

0: कहा भी है ना,
1: कहा भी है ना,
0: किसी को एक उंगली
1: किसी को
0: दिखाने
1: एक
0: पर
1: उंगली
0: तीन
1: दिखाने पर
0: उंगलियां
1: तीन
0: अपनी
1: उंगलियां
0: ओर
1: अपनी
0: रहती
1: ओर
0: हैं।
1: रहती हैं।
0: और
1: और
0: यहां भी यही हो रहा
1: यहां भी
0: था।
1: यही हो रहा था।
0: कल तक जो
1: कल
0: एक
1: तक जो
0: उंगली
1: एक
0: उठी
1: उंगली
0: थी,
1: उठी थी,
0: आज उन तीन
1: आज उन
0: उंगलियों
1: तीन
0: को भी
1: उंगलियों
0: देख
1: को
0: पा
1: भी
0: रहे
1: देख
0: थे
1: पा रहे
0: जो
1: थे
0: उनकी ओर
1: जो
0: थी।
1: उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: कदम चूम लूं के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सबके साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

0: कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: की सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर सामान्य शाम के 5 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में भद्रवाही मौसीकी के साथ। सामान्य प्रोग्राम के आगाज़ में आइए सुनते हैं अंकिता रानी का गाया ये भद्रवाही लोकगीत।

सामाइन अभी आप सुन रहे थे कैलाश अनमोल का गाया भद्रवाही लोकगीत। आइए अब समाप्त करते हैं मिल्खी राम मस्ताना का गाया ये भद्रवाही लोकगीत।

ये आकाशवाणी भद्रवा है, FM 101 MHz पर, और सामाइन आप समात कर रहे हैं भद्रवाही मौसीकी। सामाइन आइए अब सुनते हैं मूल राज मिश्र को।

अभी आप सुन रहे हैं भद्रवाही मौसिकी। ये आकाशवाणी भद्रवा है, FM 101 MHz पर। समाइन अब से थोड़ी देर में यानी 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में, उसके बाद यानी 6 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले का इंतजार कीजिए।

0: का अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that LPG production is all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
3: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is, we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is, some of the refineries have come back to operations, and other than that, we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
2: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than

7 बजे हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें व तबसरा, और रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा।

8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और रात 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

रात 9:30 पर आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम करंट अफेयर, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। सामिन, ये था खुलासा हमारी आज की नशरियात का।

जी आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। सामिन 6:15 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें व तबसरा रिले किया जाएगा। रिले का इंतजार कीजिए।

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ संन्या खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले खास खास खबरें कन्नै मैं विजय बजाज। मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें भारत च स्विट्जरलैंड दी राजदूत माया तिसाफी हुंदे कन्नै मलाटी करियै सैलसफा ते बागवानी खेत्तरें च आपसी साथ सहयोग बधाने बारे चर्चा कीती। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री मोहन यादव होरें मध्य प्रदेश च मां वाग देवी मंदरै गी श्री माता वैष्णो देवी मंदरै दी तर्ज उप्पर विकसित करने दे हाई कोर्ट दे फैसले मगरा माता वैष्णो देवी श्राइन दा दौरा लाया। मरम्मत सुधार कम्म मुकम्मल होने मगरा हुंदी 31 मई थमां कठुआ माधोपुर थमां रेल सेवा परतियै शुरू करी दित्ती जाग। भद्रवाह 6 जून थमां चौथे लवेंडर फेस्टिवल की मेजबानी लई पूरी चाली तैयार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समारोह का उद्घाटन करंगन। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के मते सारे हिस्सें च अज ते कल हल्की बरखा ते अंधी झक्खड़ चलने की पेशनगोई की है। उन खबरें की तफसील कन्नै पूनम डोगरा।
1: भारत ते स्विट्जरलैंड बश्कार आपसी साथ सहयोग होर निग्गर करने की बत्ता च इक होर गैं पुटदे होई भारत च स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिसाफी होरें अज मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला हुंदे कन्नै श्रीनगर च मलाटी करी आपसी साथ सहयोग बधाने सरबंधत मुद्दे जियां टिकाऊ सैलसफा, बागवानी ते होर दुए सरबंधत क्षेत्रें बारे तफसीली चर्चा कीती। इस दौरान आपसी साथ सहयोग गी होर निग्गर करने बारे भी मुक्ख तौरा पर चर्चा कीती गई। कल स्विट्जरलैंड दी राजदूत होरें श्रीनगर लोक भवन च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे कन्नै भी मलाटी कीती ही ते जम्मू कश्मीर ते स्विट्जरलैंड बश्कार प्रमुख क्षेत्रें च आपसी साथ सहयोग बधाने बारे चर्चा कीती ही। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री मोहन यादव होरें हाल च गै वरिष्ठ अधिकारियें कन्नै श्री माता वैष्णो देवी मंदरै दा दौरा लाया ते प्रबंधन सरिस्ते ते यात्रियों गी दित्ती जारदी सुविधाएं बारे जानकारी हासिल कीती। उंदा यह दौरा मध्य प्रदेश सरकार दे उनें यत्नें दा एक हिस्सा है जेदे तहत ओह मां वाग देवी मंदरै गी मां वैष्णो देवी मंदरै दे तर्ज उपर विकसित करारदे न, जेदे तहत धार्मिक पर्यटन ते भीड़ प्रबंधन उपर भी ध्यान केंद्रित कीता जाग। प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा, साफ सफाई, सीसीटीवी ते होर दुई टैक्नोलॉजी बारे भी जानकारी हासिल कीती। एदे इलावा अधिकारियें माता वैष्णो प्रशासनिक मॉडल बारे भी जानकारी हासिल कीती। मीडिया कन्नै गल करदे होई मध्य प्रदेश दे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दस्या,
2: मध्य प्रदेश में हमारे महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर देवस्थान, ओंकारेश्वर देवस्थान और अभी बहुत सारा में अभी अभी माँ वाग देवी का हाईकोर्ट ने मान्यता दी है। ऐसे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में भीड़ प्रबंधन सार्वजनिक के साथ हो सकता है। इस दृष्टि से देश भर के अलग अलग स्थानों पर हमने अलग अलग टीम भी भेजी।
1: उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और आज नौशहरा जिला अस्पताल का दौरा लाइए सुविधाएं ते मरीज दौरान उन्हें मरीजें ते उन्दे तिमारदारें कन्नै गल्लबात करिए उन्दियें चिंताएं गी सुनिया ते अस्पताल दे पूरे प्राते कामकाजें दी समीक्षा भी कीती। उन्हें सरबंधत अधिकारियें गी निर्देश दिता जे ओह सेवाएं च सुधार, बेले सिर इलाज ते मरीजें गी बेहतरीन सुविधाएं दी दस्तयाबी यकीनी बनान। उप मुख्यमंत्री होरें जोर देइयै आखिया जे लोकें गी म्यारी सेहत सहूलतां उपलब्ध करवाना सरकार दी मुख प्राथमिकता है। इस मौके पर बोलदे होई उन्हें आखिया,
3: पीएमओ साहब खुद कह रहे हैं कि जहां बुजुर्ग हैं या जिनको ओटीपी के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए हम डायरेक्ट एक कॉपी इनको दे देते हैं और दूसरा पर्ची जो है वो काट देते हैं। इंजेक्शन की भी पहले भीड़ में थोड़ी सी कमी आई थी लेकिन अब वो पूरी है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है बट जहां तक तालक है जो एसेसरीज इसको चाहिए, जो मशीनें इसको चाहिए, फर्नीचर चाहिए, वो काफी सारी चीजों की अभी शॉर्टफॉल है तो लिहाजा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि एक नई बिल्डिंग बनी है और उसके अंदर हर चीज अब नई बननी है, चाहे वो बेड से लेके, चाहे वो फर्नीचर से लेके, चाहे एक कुर्सी से भी लेके, एक इंजेक्शन से भी लेके, हर चीज की यहाँ जरूरत है।
1: नौ महीने दे वक्फे परैंत 31 मई थमां जम्मू थमां आने जाने आली ट्रेनें दी सेवा परतियै ब्हाल करी दित्ती जाग। पिछले बड़े बरे हाड़ आने करी कठुआ ते माधोपुर दा रेलवे पुल नंबर 17 गी बड़ा मता नुकसान होआ हा जिदे करी उसी बंद करी दित्ता गया हा ते ओदे मरम्मत दा काम जारी रहा। जम्मू रेलवे डिवीजन ने इन्हें ट्रेनें दे परतियै चलने दी घोषणा कीती। एदे अलावा गर्मियें च यात्रुएं दी भीड़ गी घट करने लई जम्मू तवी नमीं दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12426 ते कटरा नमीं दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 04082 च बादू डब्बे लाए जांगन।
0: एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: ते उन बाकी दी खबरें कन्नै विजय बजाज।
0: औंदी 6 ते 7 जून गी चौथे लवेंडर उत्सव की मेजबानी लई भद्रवा पूरी चाली तैयार है। इस मेले दौरान जम्मू कश्मीर ते दुनिया भर च भी पर्पल रिवोल्यूशन ते लवेंडर आधारित ग्रामीण उद्यमिता की कामयाबी गी दर्शाया जाग। CSIR IIIM आसिया भद्रवा दे सरकारी डिग्री कॉलेज च आयोजित इस कीता जाग। CSIR IIIM जम्मू दे डायरेक्टर जबीर अहमद होरें आखेआ जे CSIR दे एरोमा मिशन ने 5000 शा मते करसाने ते उद्यमियें गी लाह हासल करवाया ऐ। इस बारे इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई उन्हें आखेआ,
4: लेवेंडर फेस्टिवल 2026 जो फोर्थ एडिशन है लेवेंडर फेस्टिवल का, भद्रवा में 6-7 जून को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और CSIR के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 6 को वो इनाग्रेट करेंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लेवेंडर फेस्टिवल में एक यूनिक एक्टिविटी जो है वो हमारे फार्मर्स का स्टार्टअप्स का जो इंडस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन होने वाला है। जो लास्ट ईयर का लेवेंडर फेस्टिवल था हमने बायर सेलर मीट्स वर्चुअल करवाई थी, इस बार जो है हमने CSIR की तरफ से और TIIIM की तरफ से इंडस्ट्री के लोगों को वहां बुलाया है।
0: रामबन जिले च ग्रामीण विकास मंत्रालय तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन आप सहायता समूहें दे राएं गरीब लोकें खास करिए महिलाएं गी सशक्त बनांदी हुई ग्रामीण समुदायें लई बड़ा फायदेमंद साबित होआ करदा है। इस योजना का मकसद यह यकीनी बनाना है जे हर ग्रामीण परिवार चा घट्टो घट्ट एक महिला आप सहायता समूह की सदस्य बने तां जे टिकाऊ आजीविका कौशल विकास ते माली समावेशन की बढ़ावा थोए। ये पहलकदमी जिले के दूर दरेडे इलाकें च स्वरोजगार आले सिखलाई कार्यक्रमें ते उद्यम कारखानादारी पर भी केंद्रित है। अधिकारियों का आखना है जे ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाएं गी आत्मनिर्भर बनने ते उनकी आर्थिक दशा च सुधार लई बड़ा मददगार है। इस बारे आकाशवाणी समाचार कन्ने गल करदी होई एक मकामी महिला ने आख्या,
5: जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रीन हाउस वगैरह मिले हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफी NRLM के साथ जुड़ी हुई हूँ बेनिफिट्स, जैसे सब्जियां वगैरह लगाई हमने, बाकी मैं टेलरिंग का भी काम किया मैंने, उसमें भी उन्होंने हमें हेल्प की है। गवर्नमेंट काफी बेनिफिट्स देती है जो भी NRLM से जुड़े हुए हैं।
0: पुंछ जिले के उच्चे पहाड़ी जंगलें च कल अग लगने करी जंगलात की संपत्ति की बड़ा मता नुकसान पुज्जा ते इतिहासिक मुगल रोड दे राएं सफर करने आले अंदर भी डर त्राह आला माहौल बनी गया। जंगलात महकमे आसिया मुकामी स्वयं सेवियों के सहयोग कन्ने कीती गई फौरी कार्रवाई की बदौलत अग्गी पर काबू पाया जाई सकिया। अधिकारियों इस गल की तस्दीक की है जे हालात हुण काबू च ते लगातार निगरानी रखी जा रही है। तुआई आकाशवाणी समाचार कन्ने इस बारे गल करदी होई मुकामी बसनीक ने आख्या,
6: रोनिक शर्मा उनसे शोपिया की रोड है जिसको मुगल रोड कहा जाता है, उस रोड के ऊपर जो जंगल में आग लगी थी उसको बहुत जल्दी ही काबू पा लिया गया है और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने इमीडिएटली आग के ऊपर काबू पा लिया और यात्री जो हमारे आने जाने वाले उनको किसी भी असुविधा का की परेशानी नहीं हुई है और इस समय ट्रैफिक है जो बहाल है और लोग आराम से वहां से सफर कर।
0: मौसम विभाग श्रीनगर ने अज ते कल जम्मू कश्मीर दे मते सारे इलाकें च हल्की बरखा ते अंधी झक्खड़ चलने दी पेशनगोई कीती है। उआं 31 मई शा 3 जून तोड़ी मौसम आम तौर पर खुश्क गहरा होगा। इहदे मगरा 4 ते 5 जून गी भी मते सारे इलाकें च गरज चमक कन्ने हल्की बरखा पौने दे आसार न। मौसम विभाग ने 6 थमां 8 जून तोड़ी मौसम दे खुश्क रौहने दा अनुमान जताया है। लोकें गी अंधी झक्खड़ दौरान सौगे सतर्क रौहने लई आखिया गया है। इहदे बारे होर मती जानकारी देआर दिन मौसम विभाग दे डायरेक्टर मुख्तार अहमद,
7: अभी जैसे एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी की टिल आफ्टरनून मौसम ठीक रहेगा, फिर आफ्टरनून के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा गस्टी विंड्स आ रहे हैं, थंडर शावर एक्टिविटी और हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है, गस्टी विंड्स भी चलने के चांस हैं खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और कल भी जो है मौसम खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर क्लीमेंट वेदर की पॉसिबिलिटी है, गस्टी विंड्स हेल स्टॉर्म और
1: मुख खबरें एक बारी पढ़ती है। मुक्ख मंत्री उमर अब्दुल्ला होरें भारत च स्विट्जरलैंड दी राजदूत माया तिसाफी हुंदे कन्नै मराठी करियै सैलसफा ते बागवानी क्षेत्रें च आपसी साथ सहयोग बधाने बारे चर्चा कीती। मध्य प्रदेश दे मुक्खमंत्री मोहन यादव होरें मध्य प्रदेश च मां बागदेवी मंदरै गी श्री माता वैष्णो देवी मंदरै दी तर्ज पर विकसित करने दे हाईकोर्ट दे फैसले मगरा माता वैष्णो देवी श्राइन दा दौरा लाया। मरम्मत कम्म मुकम्मल होने मगरा औंदी 31 मई थमां कठुआ माधोपुर थमां रेल सेवा परतियै शुरू करी दित्ती जाग। भद्रवाह 6 जून थमां 4th लवेंडर फैस्टिवल की मेजबानी लई पूरी चाली तैयार। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और समारोह का उद्घाटन करगन। तेरे कन्ने गे इस वेले दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: आओ सुनो गल गुआंढियां दी। पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ते उत्थों दे फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर अजकल अपनी अवाम दे सामने मीडिया ते सोशल मीडिया दा इस्तेमाल करिए अपनी सिफत करवाने च लगे दे न, जे ओ अमरीका ते ईरान दे बशकार समझौता करवाने च कामयाब होआ दे न। तुआई दुई बखी पाकिस्तान दी अवाम उन्ने दोनों गी ए सवाल भी पुछा दी है, जे एक बखी पाकिस्तान ईरान ते अमरीका दे बशकार पीस एग्रीमेंट करवारदा है, पर दुई बखी बलोचिस्तान ते अफगानिस्तान च पाकिस्तान मासूम लोकें गी मारने च लगी दी है। पाकिस्तान दी अवाम ए सवाल भी करार दी है, जे जिथे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ गी अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दी मिलना हुंदा है, उथे उंदी जगह फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर मिलने जंदे न। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शाहबाज शरीफ गी घट अहमियत दिंदे न, जदके जनरल आसिफ मुनीर दी सिफतें पर सिफत करदे लभदे न। उत्थों दी अवाम ए सवाल करार दी है, जे आखिर पाकिस्तान दी सरकार फौज चला दी है या शाहबाज शरीफ। दरअसल पाकिस्तान च हमेशा फौज दा गे दबदबा रहा है ते राजनीतिक सरकार छड़ी कठपुतली सरकार दे तौरे पर रोंदी है। जनरल आसिफ मुनीर अजकल ईरान अमरीका ते चीन दे कन्ने संपर्क च ज्यादा समय उत्थे गे रोंदे न। उनेंगी पाकिस्तान दी अवाम दा ख्याल घट ते अमरीका ईरान ते चीन दा ख्याल मता है। चेता रवे जे जनरल आसिफ मुनीर 2016-17 च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दे महानिदेशक है, जेदे कन्ने उंदा उत्थों दी सरकारे दी खुफिया एजेंसी कन्ने अच्छा नेटवर्क बनेदा है। इस करी अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर गी ज्यादा पसंद करदे न। पाकिस्तानी अवाम ते इत्थों तकर इब्बी आखरदी है, जे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर गी डोनाल्ड ट्रंप दा पोस्टमैन है। पाकिस्तान दे बलोचिस्तान ते खैबर पाखन टून खवा यानी के KPK च ये फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर बलोचो ते पस्तूनो गी चुनी चुनिये मरवारदा है। अज पाकिस्तान च सरकार ना दी कोई चीज नहीं है, उत्थे छड़ा जनरलो ते खुफिया एजेंसियां दा राज चलारदा है। ओ भी ओ जनरल जेड़े कदू दे रिटायर होई चुके दे न ते एक्सटेंशन पर नौकरी करारदे न। अपने आप भी आसिफ मुनीर कदू दे रिटायर होई चुके न पर एक्सटेंशन पर चलारदे न। इंदे अलावा कन्ने अगे प्रमोशन ना बंद होई गेदियां न। पाकिस्तानी फौज च अंदरों अंदरी रिवॉल्ट जनेहा माहौल बनेदा है। कदे भी जनरल आसिफ मुनीर दे खिलाफ रिवॉल्ट होई सकदा है। एदे अलावा पाकिस्तानी ISI दा मुखिया ते इंटेलिजेंस ब्यूरो दे चीफ भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लैदे न, जेदे कन्ने पाकिस्तान दा सारा सिस्टम एक्सटेंशन पर चलारदा है। बलोचिस्तान ते KPIC च सरकार दा कोई नियंत्रण नहीं है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तान फौज की अंदर बढ़ने नहीं दिया दी है। कई पाकिस्तानी फौज दे जवान रोजाना BLA दे मुजाहिद दे कन्ने एनकाउंटर च मारे जा रहे न। बलोचिस्तान दे लोग पाकिस्तान थमां आजादी दी मंग करा रहे न ते पाकिस्तानी फौज उनेंगी आतंकवादी आखदी है। जिस अफगानिस्तान च पाकिस्तानी फौज ते खुफिया एजेंसी ISI कन्ने मिलिए 18 साल पहले अमरीका ते तत्कालीन USSR दे खिलाफ TTP यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान बनाई, अज उए TTP जनरल आसिफ मुनीर ते शाहबाज शरीफ दी जान दे पिछे पेद न। रोजाना पाकिस्तान ते अफगानिस्तान दे बन्ने पर पाकिस्तानी फौज ते जवान झड़प च मारे जंदे न। पाकिस्तानी अवाम उत्थों दी सरकार थमां सोशल मीडिया दे राहें पुछदी है, जे अफगानिस्तान दे कन्ने किस वजह कन्ने जंग चलारदी है, पर क्या पाकिस्तान दी अफगान पॉलिसी गलत ही ते अज उए अफगानी युवक पाकिस्तानी दे खून दे प्यासे न। पाकिस्तान दा इतिहास अगर दिखिया जाए ते पाकिस्तान कुसे दा दोस्त नहीं है। January 2024 च इसे पाकिस्तान ने ईरान पर वाई हमले किते ते अजकल ये पाकिस्तान अपने आप की ईरान दा दोस्त मनदा है। असल च पाकिस्तान कुसे दा दोस्त नहीं है, ओ छड़ा पैसे दा दोस्त है। जिथू आर्थिक मदद मिलदी है पाकिस्तान ओदा गे दोस्त बनी जंदा है। तेल दी सियासत च पाकिस्तान यूएई ते साउथ अरब च 45 लाख पाकिस्तानी युवकें दा भविष्य खतरे च पारदा है। यूएई ने पहले गए पाकिस्तान कन्ने मते सारे एग्रीमेंट कैंसल कर दिते न ते आने वाले दिन च पाकिस्तान दे हालात कने बंदे न ए दिखने वाली गल है। गल गुआंढियां दी विषय पर बस इन्ना गे। कल करगे कुसे और विषय पर गलबात।

जी आकाशवाणी भदरवा है, FM 101 MHz पर। सामान्य शाम के 6:30 हुए हैं। अब पेश है बच्चों का प्रोग्राम गुलदस्ता।

0: नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, सबके दिल के तारे बच्चे, हंसते गाते आगे बढ़ते सपनों के उजियारे बच्चे। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद मैम।
0: मैं सत्या गोस्वामी आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम गुलदस्ता लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लेकर ज़रूर आते हैं, तो इस बार भी हम आपको एक खास विषय पर बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मेहनत का फल। मेहनत की राह पर जो चलते हैं सपनों को सच वही करते हैं, मुश्किल चाहे कितनी भी आए हिम्मत वाले ही आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। मेहनत मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो जीवन में अवश्य सफल होता है। बिना मेहनत के कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। प्रकृति भी हमें मेहनत का महत्व सिखाती है। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है, तभी हमें अन्न मिलता है। जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वो ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ी लगातार अभ्यास करते हैं तभी वो जीत हासिल कर सकते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वो कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करता है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने से एक दिन ज़रूर मिलती है। आलसी व्यक्ति हमेशा पीछे रहते हैं, जबकि मेहनती व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें अपने जीवन में मेहनत को अपनाना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन से काम करना चाहिए। मेहनत हमें आत्मविश्वास, ज्ञान और सफलता प्रदान करती है। मेहनत से ज्ञान और अनुभव बढ़ता है। मेहनत से इंसान अपने सपने पूरे करता है। मेहनत इंसान को मजबूत और जिम्मेदार बनाती है। मेहनत से जीवन सुखी और बेहतर बनता है। और मेहनत हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है। मेहनत करने के लिए हमें कई अच्छी बातें अपनानी चाहिए, जैसे समय की पाबंदी, यानी टाइम टेबल बनाकर हमें अपने सभी काम करने चाहिए। आलस छोड़कर मन लगाकर काम करना चाहिए। धैर्य और हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। नियमित अभ्यास और कोशिश करनी चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बड़ों की सलाह और मार्गदर्शन मानना चाहिए। ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम मेहनती बनेंगे,
1: हम सब मेहनती बनेंगे
0: और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे,
1: हमेशा प्रयास करते रहेंगे।
0: बहुत अच्छा, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक छोटी सी बच्ची से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
2: मैम, मेरा नाम कृति गोस्वामी है।
0: आप प्रोग्राम में क्या सुनाओगे?
2: मैं आज आपको एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगी।
0: चलिए सुनाइए।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं कृति गोस्वामी आज आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

0: अलग अलग हैं रूप रंग और भाषाओं के फूल हैं। अलग अलग हैं रूप रंग और भाषाओं के फूल हैं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता कृति ने भारत माता पर सुनाई। सबको कृति की कविता कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी।
1: तो तालियां हो जाएं। तो चलिए करते हैं एक और बच्चे से बात। बेटा क्या नाम है आपका?
3: आकृति।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
3: मैं राष्ट्र एकता पर कुछ पंक्तियां बोलने जा रही हूँ।
1: चलिए बताइए।
3: राष्ट्र एकता देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे देश को अधिक शक्तिशाली बनाता है और हमें समृद्ध देश की दिशा में अग्रसर करता है। एक सशक्त राष्ट्र बाहरी खतरों से हमें बचाता है और देश के विकास की गति को और भी तेज करता है। राष्ट्र एकता के बिना भारत को एक महान देश बनाना असंभव है। एकता हमें कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाती है। राष्ट्र एकता के लिए हम सभी को एकजुट होकर समाज में समानता और समान अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। हमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। राष्ट्र एकता के माध्यम से हम सभी अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों से होते हुए भी एक साथ चल सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अंततः हम सबको ये समझना चाहिए कि राष्ट्र एकता हमारे देश के विकास की गति को और भी तेज करता है। राष्ट्र एकता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्र एकता हमें यह समझाती है कि हमें अपने मतभेदों को भुलाकर देश के हित में सोचना चाहिए। जब देश के लोग एकजुट रहते हैं तो देश की और ताकत और भी बढ़ जाती है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा टॉपिक लाया था आकृति ने, राष्ट्र एकता। बच्चों, किसी भी देश के लिए राष्ट्र एकता बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र एकता हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे काम करके अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। अच्छे बच्चे ही आगे चलकर अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है, सबको आकृति दीदी का ये टॉपिक कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तो ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाएं। चलिए करते हैं एक और बच्चे से बात। बेटा क्या नाम है आपका?
4: राहिनी।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
4: मैम, मैं एक भजन लेकर आई हूँ।
1: चलिए सुनाइए।

0: धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी तर्ज में रहानी ने शिव जी का भजन सुनाया। सबको कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तालियां हो जाएं। तो चलिए करते हैं एक और बच्ची से बात। बेटा क्या नाम है आपका?
3: इनाया।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
3: मैं नशा मुक्त भारत लाई हूँ।
1: नशा मुक्त भारत पर कविता बताइए।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं इनाया राजपूत। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत है। आज का विषय है नशा मुक्त भारत। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। जीवन में अगर स्वस्थ है रहना, तो नशे से हमें दूर है रहना। अब हम सबने ये है ठाना, नशे को जड़ से है मिटाना। देश को आगे है बढ़ाना, नशे को है खत्म कराना।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता अनाया ने नशा मुक्त भारत पर लाई। सबको कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी।
1: तो तालियां हो जाएं। चलिए करते हैं एक और बच्ची से बात। बेटा क्या नाम है आपका?
4: नमामि।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
4: मैम कविता।
1: कविता, कौन सी कविता लाई हैं?
4: चंदन है इस देश की माटी।
1: चंदन है इस देश की माटी, सुनाइए।
4: चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। यहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। यहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई नमामि ने। सबको कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी।
1: तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के बीच में हम आपको एक गीत भी सुनाते हैं, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं एक गीत।

0: घर के भेस में।
1: सबको गीत कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक और बच्चे से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
3: उर्वशी।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
3: नशा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की समस्या बन चुकी है। मेरा विषय है नशा। दोस्तों, कहा जाता है नशा इंसान को पहले आदत बनाता है, फिर ज़रूरत और आखिर में बर्बादी। आज के समय में बहुत से युवा शौक, दिखावे, तनाव या गलत संगत के कारण नशे की ओर बढ़ चुके हैं। ज़रूरत है सिर्फ मज़े के लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही मज़ा एक ऐसी लत बन जाता है जो इंसान से उसका स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, सामान और भविष्य का सब कुछ छीन लेता है। नशा कई प्रकार का होता है, जैसे शराब, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा आदि। लोग सोचते हैं कि इससे तनाव कम होता है, लेकिन सच तो ये है कि नशा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो इंसान अपने सपनों का नशा करता है उसे किसी और नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। नशे का सबसे ज़्यादा असर युवाओं पर पड़ता है, क्योंकि युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं। अगर देश का युवा ही नशे में डूब जाए तो देश का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। आज कई परिवार सिर्फ इसीलिए डूब रहे हैं क्योंकि उनके घर में कई सदस्य नशे में गिरफ्तार हैं। नशा एक ऐसा जाल है जिससे फंसना आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। अगर तुम अपने आसपास देखना चाहो तो कई लोग सिर्फ गलत दोस्ती की वजह से नशे की शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा संगत चुननी चाहिए। माता पिता और शिक्षाओं की भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को सही मार्ग दिखाएं और उनको नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, ना हम खुद नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया था उर्वशी ने नशे पर। तो बच्चों, नशीले पदार्थों का सेवन हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इनका सेवन हमारी पढ़ाई और जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हमें हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए और अच्छी संगत में ही रहना चाहिए। तो उर्वशी दीदी का टॉपिक सबको कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तालियां हो जाएं। चलिए करते हैं एक और बच्ची से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
4: युक्ता।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
4: कविता।
1: बताइए।
4: जय हो जग के पालनहार, हम पर कितने हैं उपकार। हमको जीवन दान दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अनुस्तर को घर है कृपा आपकी, हम सब पर है कितने देर डाले उपकार। जय हो जग के पालनहार, जीवन के इस नौ प्रभाता में हम नन्हे बालक आए हैं। भक्ति भाव से भेंट सिरा कर तेरे चरणों में हैं। हम माँ भो तू ज्ञानवान है, हम शक्तिहीन तू शक्तिवान। तेरे चरणों में नशीर है, स्वीकार करो शिष्यत प्रणाम है।
1: बहुत अच्छी कविता युक्ता ने लाई थी, जय हो जग के पालनहार। सबको युक्ता की कविता कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी।
1: तालियां हो जाएं। तो चलिए करते हैं एक और बच्चे से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
5: अनिरुद्ध।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आए हैं?
5: महाराणा प्रताप पर टॉपिक।
1: महाराणा प्रताप, चलिए सुनाइए।
5: आज हम उस वीर की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते दुश्मनों के हाथ से तलवार छूट जाया करती थी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि आज़ादी की और स्वाभिमान की वो मिसाल हैं जिसे सदियों तक बुलाया ना जा सकता। जब पूरा हिंदुस्तान अकबर के सामने झुक चुका था, तब मेवाड़ का ये शेर अकेला खड़ा था। उन्होंने महलों के सुख को ठुकरा दिया पर अपनी आज़ादी

0: का सौदा नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि घास की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना कतई मंजूर नहीं। ये उनकी आत्मसम्मान की प्रकाशता थी। हल्दी घाटी का मैदान उनकी बहादुरी की गवाही है। जब 80 किलो का भाला और दो धारी तलवार चलती थी तो मुगल सेना में हंकार मच जाता था। उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक ने दिखाया कि अगर जज्बा हो तो कम संख्याओं में भी बड़ी सेनाओं को हराया जा सकता है। प्रताप की साखी उनकी वफादार घोड़ी चेतक के बिना अधूरा है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, एक साथी था। वो किस्सा आज भी रोमांच भर देता है। जब घायल होने के बावजूद चेतक ने 22 फीट का नाला पार किया ताकि अपने स्वामी की जान बचा सके, ऐसा स्वामी भक्ति और प्रेम और कहानी देखने को नहीं मिलती। प्रताप ने हमें एक और बड़ी सीख दी, एकता। उन्होंने भील भैयाओं को गले लगाया, उन्होंने युद्ध की शिक्षा दी और समाज के हर वर्ग को एक कतार में खड़ा किया। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब मेवाड़ के रक्षक थे। अंत में बस यही कहूँगा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे पहाड़ जैसी हो, अगर हमारा इरादा पक्का हो, हम अपने हौसलों पर टिके हैं, तो विजय हमारी होगी। आइए उनके रास्ते पर चले। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा टॉपिक लाया था अनिरुद्ध ने महाराणा प्रताप पर। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की सीख मिलती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हमें उनसे बहादुरी, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सबको अनिरुद्ध भैया का टॉपिक कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तालियां हो जाएं। चलिए करते हैं एक और बच्चे से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
3: आरव।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आए हो?
3: मैम, कविता।
1: कविता सुनाइए।
3: सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सारा जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती मिलजुल कर बैठते हैं, उनके मीठे छुर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी।
1: बहुत अच्छी कविता लाई थी आरो भैया ने। सबको आरो भैया की कविता कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी।
1: आरो भैया के लिए तालियां हो जाएं। तो चलिए करते हैं एक और बच्ची से बात। बेटा, क्या नाम है आपका?
4: ईशानी।
1: प्रोग्राम के लिए क्या लेकर आई हैं?
4: मैं आज प्रकृति पर एक निबंध लेकर आई हूँ।
1: सुनाइए।
4: प्रकृति भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, आकाश, सूरज, चांद, तारे और जानवर सब आते हैं। प्रकृति हमारी जीवन रेखा है। ये हमें शुद्ध हवा, पानी, खाना और रहने की जगह देती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। प्रकृति को साफ और सुंदर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। हरियाली और शांति के लिए प्रकृति बहुत ज़रूरी है। जब हम पार्क या जंगल में जाते हैं तो मन को शांति मिलती है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका आनंद ले सकें। निष्कर्ष, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। इसका सम्मान और संरक्षण करना हम सबका फर्ज है। जितना हम प्रकृति को प्यार देंगे उतना ही वह हमें खुशी और सुख देगी। धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छा प्रकृति पर निबंध लाया था ईशानी ने। सबको ईशानी दीदी का निबंध कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तालियां हो जाएं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।
2: जय हिंद।
5: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का प्रोग्राम गुलदस्ता। सामिन, आइए अब सुनते हैं फिल्म बेताब से नगमा।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। सामाइन अब से थोड़ी देर में यानी 7 बजे हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन। 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें व तबसरा, और रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा।

0: Jesse Srinagan. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के सामान को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, इमसाल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए लगभग 750 नीम फौजी कंपनियां तैनात। स्विट्जरलैंड की सफीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात, दूरदर्शिता उनकी उम्मीद जाहिर की। 2022 की हदबंदी के ताल्लुक से कई इलाकों की आबादी के तहफुजात बरकरार। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आबपाशी की सहूलियात गैर तसल्ली बख्श। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018 07 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6: دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہیں. جانکاری خطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ.
9: رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
10: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا. پولیس کیس ہو گیا تو
9: ایک گولڈن آ رہے ماں, ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
10: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے.
9: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
10: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
9: ماں اب 7 رولز ہیں, نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
10: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
9: ہاں ماں, آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
10: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
9: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں, زندگی بچائیں.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
0: شربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. مرکزی وزارت داخلہ نے اس سال کی شری امرناتھ یاترا کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے لیے 670 سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کمپنیاں تعینات کرنے کی منظوری دی ہے, تک جاری رہے گی. حکام کے مطابق یہ یاترا کے لیے اب تک کی سب سے بڑی تعیناتی ہوگی, جسے جموں کشمیر انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں منصوبہ بند کیا گیا ہے. CAPF اہلکاروں کو لکھن پور سے لے کر گفا تک پورے روٹ پر تعینات کیا جائے گا, جس میں بالتل اور پہلگام روٹس, بالتل اور ننمن بیس کیمپ, یاتری نواس جموں, جموں سری نگر قومی شاہراہ اور دیگر اہم مقامات شامل ہیں. इजाफी नीम फौजी दस्ते जून के पहले हफ्ते से जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 25 जून तक तैनाती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। भारतीय फौज यात्रा रूट्स के स्ट्रेटेजिक मकामात और गुफा के अतराफ को महफूज बनाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी ऑपरेशंस की हमाहंगी यकीनी बनाएगी। वाजिर है कि इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक मुल्क भर में नामजद बैंक ब्रांचों के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। ये 57 रोजा यात्रा बालतल और नुनमन पहलगाम रूट से बैक वक्त 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्ताम को पहुंचेगी। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर माया चसाफी ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ तआवुन के इम्कान पर तबादले ख्याल किया। इस सिलसिले में वजीर आला के दफ्तर के मुताबिक मुलाकात में पायदार सियाहत, बागबानी और मुतल्लिक शोबों पर बातचीत हुई। याद रहे कि स्विस सफीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कल मुलाकात की थी। अपने एक बयान में सफीर ने कहा कि श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकातें नतीजा खेज रहीं, जिनमें पायदार सियाहत, पेशावराना तरबियत, फूड प्रोसेसिंग और ज़िरात में तआवुन के इम्कान पर बात हुई। माया चसाफी ने कहा कि वो इस बात पर फख्र महसूस करती हैं कि स्विस महारत खित्ते की तरक्की में निजी शोबे के जरिए अपना किरदार अदा कर रही है, जिसमें टनल्स, पुल, हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी और मुश्तरका तहकीकी मंसूबे शामिल हैं। स्विस सफीर ने मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा भी किया, जहां की खूबसूरती देखकर वो मशहूर हुईं। समन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मुल्क के तमाम हाईकोर्ट्स को हिदायत जारी की कि जिन मामलों में फैसलों को महफूज रखा गया है उनके फैसले 3 माह के अंदर अंदर सादिर किए जाएं। अदालत उज़्मा के बकौल फैसले को महफूज रखे जाने की तारीख से सिर्फ 3 माह के अंदर फैसला सादिर किया जाना चाहिए। इधर कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आज एक फैसले में उन पेटिशन्स को खारिज कर दिया जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस में SI यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उम्र की बालाई हद में छूट देने की दरखास्त की गई थी। अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर में साल 2022 में रूबामल लाई गई हदबंदी के ताल्लुक से कई इलाका जात की आबादी को तरह तरह की शिकायतें हैं। इस सिलसिले में रामबन की तहसील नील के मुख्तलिफ देहात की आबादी का कहना है कि हदबंदी के नतीजे में कई देहात को नील से अलग करके दीगर तहसीलों के साथ जोड़ दिया गया, ताहम ये कदम उनके लिए खासा

22 बना हुआ है और नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम और असेंबली हलकों की नई हदबंदी के बाद इलाका नील की इज्तिमाई शिनाख्त अब मुतासिर हुई है और आवाम को रोजमर्रा जिंदगी में कई पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साबका तहसील बानहाल के इलाका नील के मुकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि नील का इलाका माजी में एक मरबूत और मुतहद खिता तसव्वुर किया जाता था, लेकिन अब मुख्तलिफ इंतजामी हिस्सों में तकसीम हो चुका है और इसके कई गाँवों को तहसील रामसू के तहत रखा गया है, जबकि एक ही इलाके के कई गाँवों को तहसील उकड़हाल पुगल परिस्तान के साथ मुंसलिक किया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तकसीम ने इंतजामी मामला ही नहीं बल्कि समाजी, खानदानी और अवामी सतह पर भी कई मसाइल को जन्म दिया है और कई खानदान ऐसे हैं कि जिनके बाद अफराद एक तहसील में जबकि बाकी दूसरी तहसील में शामिल किए गए हैं। मुकामी समाजी व सियासी कारकुन तारिक इब्राहिम सोहेल और मोहम्मद सादिक नायक ने शहरबीन से बात करते हुए इलाका नील के अवाम की परेशानी बयान करते हुए कहा कि एक ही खानदान के दो बाई तहसील रामसू में शामिल है जबकि दीगर दो बाई उकड़हाल पुगल परिस्तान का हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी दस्तावेजात, आराजी रिकॉर्ड और दीगर मामलात में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि इलाके की आबादी के एक हिस्से को यहां से 30 किलोमीटर दूर नयाबत सीनाबत्ती का हिस्सा बनाया गया है जो हजारों लोगों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इंतजामी तकसीम के बाद मामूली सरकारी कामों के लिए भी मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं और बाज आराजी रिकॉर्ड रामसू में मौजूद है जबकि दीगर मुतलका कागजात उकड़हाल में तलब किए जाते हैं और इसके अलावा तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली, पानी और दीगर अवामी सहूलियात के मामलात भी हम आहंगी का फुकदान महसूस किया जा रहा है। नील के मुकामी लोगों और सबका पंचायती नुमाइंदों का कहना है कि अगरचि नए इंतजामी यूनिटों के काम का मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराम करना था, ताहम जमीनी सतह पर कई पहाड़ी और दूर इलाकों में इसके बरक्स उलझने पैदा हुई हैं और नील जैसे इलाकों में जोग्राफियाई कुर्बत, खानदानी रवाबित और मुकामी जरूरियात को नजरअंदाज करके सिर्फ कागजी तकसीम की गई है जिसके मनफी असरात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सन 2014 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में नए इंतजामी यूनिटों के कयाम के तहत हुकूमत ने अवामी रसाई और बेहतर इंतजामी सहूलियात फराम करने के मकसद से कई नई तहसीलें, सब डिवीजन और दीगर इंतजामी इकाइयां कायम की थी और जिला रामन के दूर उफ्तादा इलाकों में भी इस अमल के तहत उकड़हाल पुगल परिस्तान और रामसू समेत कई नए इंतजामी यूनिट तश्कील दिए गए थे। सन 2020 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में नई असेंबली हदबंदी का अमल शुरू हुआ था और हदबंदी कमीशन की सिफारिशात सन 2022 में नाफिज की गई थी और इस नई हलका बंदी के नतीजे में कई इलाकों की सियासी वाबस्तगियां तब्दील हुई हैं और मुतद्दिद देहात व बस्तियों को नए असेंबली हलकों के साथ मुंसलिक किया गया है। तहसील रामसू का नील इलाका भी इन्हीं तब्दीलियों से मुतासिर हुआ है जहां की आबादी को बानहाल और रामबन असेंबली हलकों में तकसीम कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि इलाका नील में पड़ने वाले हरवाड़ी, सिनेगाम, परहिंदर, लदनीहाल, जराडी, नागंदर, हाला, धनमस्ता और सुरंगा को तहसील उकड़हाल पुगल परिस्तान का हिस्सा बनाया गया है, जबकि द्रुपटा, चिदोस, भूरदार, बाटू और बरमूजी को तहसील रामसू का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर ही बस नहीं की गई बल्कि नील के ही डक, खारवान और रूनी गांव को बानहाल असेंबली हलका से काटकर रामबन असेंबली निशस्त का हिस्सा बनाया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि हदबंदी और नए इंतजामी यूनिटों का बुनियादी मकसद बेहतर हुक्मरानी, अवामी सहूलियात और इंतजामी रसाई को यकीनी बनाना था, लेकिन नील के लिए ये फैसले जमीनी सतह से मुताबिकत नहीं रखते हैं और एक ही गांव और खानदान को मुख्तलिफ तहसीलों और असेंबली हलकों में तकसीम करके अवामी मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं और इसके मनफी असरात हजारों लोगों पर बरहे रास्त मुरतब हो गए हैं। मुकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने यक जबान होकर हुकूमत और मुतलका हुकाम से अपील की है कि नील के मामले का संजीदगी से जायजा लिया जाए और इंतजामी व इंतखाबी तकसीम में अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इसलाहात की जाए और ऐसे हसास और दूर उफ्तादा इलाकों के बारे में फैसले करते वक्त जोग्राफियाई हालात, खानदानी रवाबित और अवामी जरूरियात को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि लोगों को हकीकी मानों में बेहतर इंतजामिया और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस सिलसिले में बात करने पर मेंबर असेंबली बानहाल सज्जाद शाहीन ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने नील के अवाम को दरपेश इस मसले को पहले भी असेंबली में उठाया है और उनकी

0: कोशिश होगी कि नील के इलाके में बुनियादी सतह पर की गई इस गैर मुनसफाना तकसीम को ठीक करके इसे तहसील रामसू से ही मुंसलिक किया जाए ताकि मुनकसिम आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
1: मोहम्मद अस्किन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सोपोर पुलिस ने कहा है कि पांजीपुरा इलाके की एक पुरानी वीडियो जो दरअसल 2025 के एक वाकये से मुतालिक है और इस पर उस वक्त कार्रवाई हो चुकी थी को सोशल मीडिया पर हालिया वाकया जाहिर करके फैलाया जा रहा है। हुकाम ने बताया कि इस गुमराहकुन वीडियो को बाज सोशल मीडिया सार्फिन और न्यूज पेजेस शेयर कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के बकौल यह मामला पहले ही निपटा दिया गया था और इसकी दोबारा तशहीर बेबुनियाद और गैर जरूरी है। सोपोर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मवाद को शेयर करने से पहले हकायक की तस्दीक किया करें क्योंकि पुरानी वीडियोज को नई खबर के तौर पर फैलाना गलतफहमी पैदा करता है और मुतासर कुंभों के लिए गैर जरूरी परेशानी का बायस बनता है। दरियासना रहीम रिजवान की इतला है कि जोजिला के मकाम पर आज उस वक्त एक ड्राइवर मोजजाती तौर पर बच गया जब सीमेंट का वो ट्रक जिसे वो चला रहा था उसके काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। दरियासना कल शाम सोनमर्ग के इलाके में चलने वाली तेज हवाओं के नतीजे में फिश पॉन्ड सोनमर्ग के नजदीक नस्ब झूले नीचे गिराए जिसके नतीजे में सफापुरा का एक बाशिंदा जख्मी हो गया जिसे इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा मुंतकिल किया गया है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स और वादी के मारूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर रहमानी आज अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। तलहा जहांगीर ने अपने करियर का बेशतर हिस्सा आकाशवाणी श्रीनगर में गुजारा और मुख्तलिफ नौ प्रोग्राम पेश करके सामयन में एक मुनफरिद पहचान बनाई। उनका शुमार वादी के अच्छे मिजाह निगारों में भी होता रहा। एहतमाम किया जिसमें उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। समन वादी में गुज़श्ता लगभग एक माह से पाए जा रहे मौसम के बेहंगम मिजाज ने दीगर मामूलात जिंदगी के साथ साथ ज़रई शोर कर रखा। आंधियों के नतीजे में जहां में वबागात मुतासिर हुए हैं वहीं धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान कई इलाका जात से इतलात आ रही हैं कि मेवात को स्कैब जैसी बीमारी हाल है कि इन बीमारियों का अगर बरवक्त सद्देबाब ना किया गया तो मेवे की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट।
5: वादी कश्मीर में गुजशत कई हफ्तों से गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की वजह से जहां काश्तकारों की सरगर्मियां मुतासर हो गई है, वहीं तेजर की बारिश और जालाबारी की वजह से जहां किसानों को नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है, वहीं गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की वजह से सेब और दीगर मेवा बागात में कई तरह की बीमारियां फूट पड़ने से बाग मालिकान में तश्वीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी कश्मीर के ताल सब जिले में भी गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल की इस मार ने मेवा संत से वाबस्ता अफराद को परेशानियों में धकेल दिया है, क्योंकि जहां हालिया जालाबारी ने मंदूरा शितलर जरारी आग माछामा नागाबल और दीगर देहात में मेवाबादात को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वहीं पूरे सब जिले में बारिशों के बाद कई इलाकों में स्कैब, अल्टरनेरिया, पाउडर मिल्ड्यू, लीफ माइनर और कई दीगर अकसाम की बीमारियां फूट पड़ने से मालिका निबागात में तश्वीश पैदा हो गई है। इस नुमाइंदे ने कई मेवाबागात मालिकान को हाथों में सेब और पत्ते लेते हुए हॉर्टिकल्चर ऑफिस का रुख करते हुए देखा, जिन्होंने मुतजिक्र बीमारी के बारे में महकमे के माहरीन से राय तलब की है। कई बार मालिकान ने शहरबीन को बताया कि जहां कई इलाकों में शदीद जलाबारी ने पहले ही किसानों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है, वहीं हालिया बारिशों के बाद अब सिकैब और लीफ माइनर जैसी बीमारियां फूट पड़ने से किसान अज हद परेशान है, क्योंकि बार बार की दवाओं के बावजूद ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कई मेवा बाग मालिकान ने बताया कि त्रार इलाके में जरासीम कुछ अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलरों से सैंपल उठाकर ये बात सामने लानी चाहिए कि क्या वाकई इलाके में मयारी अद्वियात दस्तियाब है कि नहीं, क्योंकि फिर वक्त तो आवाम को इस हवाले से तहफात हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल सरताज अहमद ने जर्विन को बताया कि गैर यकीनी मौसमी सूरतहाल के बाद स्कैब और दीगर बीमारियां लग जाना एक फितरी अमल है, तहम उसे अद्वियात छिड़कने से मुकम्मल तौर कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने बाग मालिकान को अद्वियात छिड़कने से काबल उनसे सलाह मशवरा करने की तलकीन की, क्योंकि मुख्तलिफ बागात में बीमारियों की हालत मुख्तलिफ हुआ करती है। मैं आपको बता दूं त्राल इलाके में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान हॉर्टिकल्चर का रुझान बढ़ गया है और फिल वक्त सेंगलू अराजी हॉर्टिकल्चर शोबे के जर इस्तेमाल है।
1: शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी और इस रिपोर्ट के नष्ट किए जाने के दौरान ही अभी अभी हमें फोन मौसूल हुआ है रहीम रिजवान का, जिन्हें बताया कि कंगन सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस बालाई इलाकों में शदीद जालाबारी हो रही है, जिससे वहां फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। समन वादी के मुख्तलिफ जिलों से शहरबीन को ये शिकायत अभी भी मिल रही है कि इरीगेशन महकमे की तरफ से आबपाशी कोहलों और कनालों की मरम्मत तजदीद और बहाली के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक दर्जनों आबपाशी कोहलें काबिल इस्तेमाल नहीं पाई जा रही हैं। इस सिलसिले में बड़गाम से यूनिस परे का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ तहसीलों में किसान मुनासिब आबपाशी सहूलियात दस्तियाब न होने के बायस सख्त परेशान हैं। किसानों के बकौल उन्होंने अब तक कई बार महकमे आबपाशी के मकामी अहलकारों से इस बारे में रुजू किया, पर सूरत हाल जू की तू है। आपको याद होगा कि हमने इस सिलसिले में कुछ वक्त पहले, लगभग दो तीन हफ्ते पहले, इरीगेशन महकमे के अफसरान से रुजू किया था, जिन्होंने यकीन दिलाया था कि अनकरीब आबपाशी कोहलों और कनालों को बहाल किया जाएगा, ताहम जमीनी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ बताई जाती है। फिलहाल बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट।
6: वादी में आबपाशी नहरों की बरवकत मरम्मत और सफाई न होने की वजह से जरे अराजी तबाही के दहाने पर पहुंच गए, जिसे मकामी किसान और जमींदारों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वही कस्बस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में नहरे कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके, क्योंकि महकमा इरीगेशन की गफलत शारी की वजह से जिले के दर्जनों आपाशी कोहलों की वक्त पर सफाई न होने की वजह से किसानों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तफसलात के मुताबिक जिले के बीरवा, खाग, शुलीपुरा, पखरपुरा, मागाम, सोईबुक, कानहमा, मखामा, बंडगाम, हरदमालपुरा, खानसाब, चाडुरा और पोष्कर व दीगर इलाकों के लोगों के मुताबिक जिले में आपाशी कोहलों की कई सालों से न मरम्मत और न ही सफाई की गई है और इन कोहलों की तरफ महकमा अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जमींदारों के खेत खतरे में है। बकौली लोग हजारों कनाल, दरे, अराजी और मेवा बागात महकमा आबपाशी की लापरवाही से तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जिले के मैदानी इलाकों में शाली लगाने का सीजन शदमत से जारी है। वहीं ऊपरी इलाकों में आने वाले दिनों में पनीरी लगाने के लिए पानी की अशद जरूरत है, लेकिन आबपाशी नहरें कोड़ेदानों में तब्दील हो चुके हैं। बड़गाम जिले में सैराब करने वाले कनालों में लार कनाल, अहजी कनाल, सरश कोल, मलकोल, नाले तुलबरन, नाले गोगलडारा, शाली गंगा, दूध गंगा और सकनाग नाले से मुंसलिक मुख्तलिफ कोहलों महकमे की अदम तवज्जो की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों के जमींदारों और काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इधर खाग और पोष्कर इलाके के मुतअद्दिद गांव देहात के लोग इन दिनों काफी परेशानी हाल है, क्योंकि गोगलडारा इलाके में नहरों की खस्ताहाली और बरसों से सफाई न होने की वजह से कोहलों में मिट्टी और कोड़ा जमा हो गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। त्रापाई, दालवाश, लोकीपुरा और शारण व दीगर इलाकों में जहां पर धान की खेती की जाती है, तमाम इलाकों में खेती के लिए आबपाशी का इंतजाम न होने की वजह से किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मजकूरा इलाके में धान की पनीरी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम आबपाशी की परेशानी के बायस अक्सर जरी जमीन बंजर होने लगी है। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बड़गाम से अपील की है कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस ले और इन इलाकों को आबपाशी की मुनासिब सहूलियतें फराहम करे, ताकि किसानों को मजीद दिक्कतों का सामना نہ کرنا پڑے۔ ادھر آج ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر شفیق خان نے ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی کے ہمراہ واتل پورہ میں 10.5 لاکھ کی لاگت سے ملٹی پرپز سپورٹس فیلڈ کی سنگ بنیاد ڈالی، جبکہ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے ٹاؤن ہال ماگا میں ایک پبلک آؤٹریچ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مانگوں کو جلد از جلد

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سید تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کی سبھی ہائی کورٹوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت۔ امتحانی مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور مستحق طالب علموں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی مرکز کی یقین دہانی۔ وزیراعلیٰ نے جموں کشمیر کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے عالمی سطح کے بہترین طور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت کی اجاگر۔ اور پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سولر سے با اختیار۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے آج ملک کے تمام ہائی کورٹوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر اپنے فیصلے سنائیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ فیصلوں کی فراہمی میں تاخیر سے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ذاتی آزادی سے متعلق مقدمات میں فوری فیصلوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی درخواستوں پر احکامات اسی دن سنائے جائیں، اور اگر فیصلہ محفوظ رکھا جائے تو اسے اگلے دن سنایا اور اپلوڈ کیا جائے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ پیپر لیک کا حالیہ معاملہ ایک انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے نئے امتحان کا عمل مناسب اور منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت طالب علموں کے خدشات کو بخوبی سمجھتی ہے اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔
1: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے، اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھولتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔ ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سمان کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس۔
0: انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے سخت فیصلہ اس لیے لیا تاکہ کسی بھی مستحق طالب علم کا مستقبل امتحانی مافیا کے ہاتھوں بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی مافیاؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نیٹ کا سوال نامہ لیک ہونے کے معاملے کو نہایت تشویشناک بتایا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے کی باریک بین تحقیقات کرنے کی مانگ رکھی۔
2: تو 5 ریاستوں میں جس میں ہوا، اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے، اور جو نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے سفر کرتے ہیں، بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے، اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے، کہیں 48 ڈگری ہے، اللہ ہی رحم کرے۔
0: دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشرق وسطی کی کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی وجہ سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ غریب عوام مہنگائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر ان سے ملنے آئے کئی وفود اور پارٹی کارکنان سے بات کر رہے تھے۔ بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا تصافی نے آج سری نگر میں وزیراعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ دونوں شخصیات نے دیر پا سیاحت، باغبانی اور دیگر منسلک سیکٹروں سمیت باہمی دلچسپی کے کئی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ وادی کے دورے پر آئی ہوئی سفیر موصوفہ نے کشمیر کی فطری اور آفاقی خوبصورتی، نیز مالا مال ثقافتی ورثے اور بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی سراہنا کی۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ نے جموں کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے عالمی سطح کے بہترین طور طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ اس سے پہلے سفیر موصوفہ نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی ملاقات کی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں پی ایم شری گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ بڑگام کے پرنسپل شبیر حسین راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
4: نشہ ایک ایسی خاموش تباہی ہے جو نوجوان نسل کے خواب، خاندانوں کی خوشیاں اور معاشرے کا سکون چھین رہی ہے۔ अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करें और नौजवान मसबत सरगर्मियों को अपनाएं। सब मिलकर अहद करें कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशियात से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें।
0: इसी दौरान जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में 1 जून को एक पद यात्रा का अहतमाम हो रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि जिले के तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम ने आज SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी के हमरा इस रैली के सिलसिले में बस स्टैंड लारू में तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने कहा,
5: अरेंजमेंट्स पूरी तरीके से जारी है, सारी प्रोग्रेस हो रही है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 1 जून को सुबह 7 बजे तक जो है यहाँ पे आ जाएं, अपना जो है जगह वो ले लें ताकि जो है एक स्मूथ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। काफी सारे लोगों का काफी एक ह्यूज पार्टिसिपेशन हमें नजर आया। अभी तक जो 50 दिन के जो कैंपेन हुए हैं उसमें लोगों ने काफी एक मीन्स इंटेंसिव तरीके से इस अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। उस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा तहसील, पंचायत एरिया है वो नहीं छूटेगा जहाँ से लोग ना आए। काफी ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पे चांस है।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस भी मनशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखे हुए। इस सिलसिले में गांधरबल पुलिस ने जिले के वंधामा इलाके में गैरकानूनी खशखाश की फसल को तबाह करके मुतलिका काश्तकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने जिले के नागबल इलाके से अबरार अहमद परे नामी एक स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मनशियात की कुछ मकदार बरामद कर ली है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरिंदर चौधरी ने कालीधर नौशहरा में ज़ेरे तामीर सिंगल टनल मंसूबे का मुआयना किया और काम की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। उन्होंने मंसूबे में ताखीर और तामीराती मयार पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतलक एजेंसियों को मयारी असूलों और हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मनसूबे की बरवक्त तकमील अवाम की सहूलत और रजौरी पुंछ जम्मू और नौशहरा के दरमियान बेहतर रबते के लिए नहायत अहम है। नायब वज़ीर-ए-आला ने इलाके में दीगर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली से कटरा तक मुजवजा NE5 एक्सप्रेस वे को कौमी शाहराहों के नेटवर्क में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह तेज रफ्तार राहदारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान रबते को बेहतर बनाएगी। शाहराहों और सड़क रबतों के वजारत के मुताबिक ये एक्सप्रेस वे दिल्ली के रानीखेड़ा से शुरू होकर हरियाणा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए कटरा के करीब कौमी शाहराह 144 से मिलेगा। मनसूबे से सफर में आसानी, तजारती सरगर्मियों और इलाकाई तरक्की को फरोग मिलने की तवक्कु है। श्रीनगर में कल यानी 30 और 31 मई को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की अहमियत के बारे में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
6: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनक़द किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेज एटसेट्रा। वील ऑल्सो हैव अ सेकेंड स्टेज विच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिले, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशन्स, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
0: वाज़ह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी कल सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर चर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। भारत ने साफ तवानाई की अपनी मुहिम में एक तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि PM सूर्यघर स्कीम के तहत अब तक 40 लाख घरों को रूफ टॉप सोलर से बाइख्तियार बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई की एक पहल नहीं बल्कि एक इनकलाबी स्कीम है जो शहरियों को बिजली के सार्फीन से बिजली पैदा करने वालों में तब्दील कर रही है। मरकज में NDA सरकार के 12 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में तामीर तरक्की के सम्राट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 12 साल के इस अरसे में भारत ने सियासी, समाजी, मईशत, बुनियादी ढांचे और आलमी सतह के महाज पर मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के कई पायदान तय किए। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत नाम की योजना काबिल जिक्र है, जिसकी अमलावरी से आम लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए ये है एक शहरी के तासुरात।
7: मैं फैयाज अहमद बारामूला से। मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। जब से आयुष्मान भारत स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पर मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। डिजिटलाइजेशन ने मुल्क के अंदर इंकलाब किया और ट्रांसपेरेंसी को आसमान तक पहुंचाया। मैं कहूंगा मोदी जी तो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से खत्ते की समाजी इकतसादी तरक्की के कई सारे काम भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस बारे में इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉक्टर अमिताभ चैटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
8: देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो 1938 से यही काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हम कुछ भी करते हैं, हमारा मेन कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो कुछ भी कर सके हम करते हैं। हमारा कमर्शियल एंगल जरूर रहता है, बैंक है, प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एम यही रहता है कि जिस तरह का भी स्कीम आए, आप किसी भी तरह का स्कीम ले लें, जैसे पिछले साल ये बहुत अच्छा एक स्कीम आया था मिशन युवा, उस स्कीम के अंदर भी हम सोल बैंकर हैं जो हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम टोटली कमिटेड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
0: प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि मन की बात रेडियो प्रोग्राम अहम मसाइल पर लोगों को तरगीब देने का एक मजबूत आला है। सदर मौसूफ ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा की मौजूदगी में बीजेपी महिला मोर्चे की एक मीटिंग की भी सदारत की, जिस दौरान मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल की तकमील पर हसूलियाबियों को उजागर करने की मुहिम का जायजा लिया गया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने मौजूदा गर्म लहर के चलते जम्मू खत्ते में बिलाखलल बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार को यह कहते हुए हदफ तनकीद बनाया है कि यह हुकूमत जमीनी सतह के हकायक से दूर है। एक बयान में पार्टी के सदर GM शाहीन ने वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत सरकार के अवामी मसाइल से उनके बकौल बेएतना होने पर तश्वीश का इजहार किया है। महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में UG दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब कल यानी 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्तें जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
9: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश रहेगी स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
0: जिला बारामूला के कई इलाकों में आज फिर एक बार जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने के इत्तला है। हमारे बारामूला के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के गुलमर्ग इलाके में आज उस वक्त

0: आधे दर्जन से ज्यादा भेड़ हलाक हो गए जब तेज हवाओं के नतीजे में वो एक बड़े पेड़ की जद में आ गए। उधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्म लहर की लपेट में, इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश होने की पेशगोई की है। इधर जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू खित्ते के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नजर लोगों को कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि वो इसके मुजर असरात से बच सकें। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
1: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें सो देट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
0: कौम आज साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को उनकी बरसी पर याद कर रही है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने आजहानी को खराज अकीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक कदावर लीडर थे जिन्होंने हमेशा देही भारत और किसानों की बहबूद के लिए जबरदस्त वकालत की। जम्मू कश्मीर के बागमालकान और ताजरों के लिए रेलवे एक बार फिर तेज, महफूज और काबिल एतमाद जरिए नकल हमल साबित हो रहा है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के मुताबिक रवां चेरी सीजन के दौरान अब तक तकरीबन 43 टन ताजा चेरी रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी मंडियों तक कामयाबी के साथ पहुंचाई जा चुकी है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा है कि ताजरों और बागमालकान की जानिब से रेलवे खिदमात का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे फल के मयार और ताजगी को बरकरार रखने में मदद मिल रही है, साथ ही किसानों को बेहतर कीमत भी हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे किसानों को मौसर और कम लागत लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं एजाज अख्तर। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुकूमत ने अपनी कयादत के 12 साल मुकम्मल किए हैं। इन 12 बरसों में बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में कई अहम इकदाम किए जिन्होंने सियासत, मईशत, बुनियादी ढांचे और आलमी सतह पर हिंदुस्तान की हैसियत पर मुस्बत और गहरा असर डाला। एनडीए हुकूमत के दौर में मुल्क में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल निजाम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकूमत ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिमात के जरिए नौजवानों और कारोबारी तबके को नई सहूलतें फराहम करने की कामयाब कोशिश की। इस दौरान UPI और ऑनलाइन अदायगी के निजाम ने हिंदुस्तान को दुनिया के नुमाया डिजिटल ममालिक में शामिल कर दिया। जरिए शोबे में भी किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई गयी जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खास तौर पर अहम है। गरीब और मुतवसित तबके के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी स्कीमों के जरिए बुनियादी सहूलतें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। खारजा पॉलिसी के मैदान में भी हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत किया जबकि कई ममालिक के साथ तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को भी फरोग दिया गया। गुज़श्ता 12 बरसों में मुल्क ने तरक्की, इस्तेहकाम और जदीदियत की नई राहें तय की हैं। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया मुआशी कसा बाजारी और गैर यकीन सूरत हाल से दो चार है, भारत की मईशत मजबूत और तेजी से तरक्की कर रही है। इस दौर को पायदार तरक्की का दौर बनाने के लिए हुकूमत और अवाम दोनों के जोश खरोश ने अहम किरदार अदा किया है। एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों

0: इनाकार किया जा रहा है, जहां हुकूमत अपनी कामयाबियों को आवाम के सामने पेश कर रही है। एनडीए हुकूमत के ये 12 साल हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक अहम दौर के तौर पर याद किए जा रहे हैं। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
3: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
4: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
5: सब्र रूषित सुलुम।
4: सुनते रहिए हमारी नशरियात
2: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
6: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

रास्ता महदूद होने के बायस तहकीक अमली मैदान में मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रही। तहकीक के फुकदान के असरात नहायत वसी हैं। सबसे पहले साइंसी और तकनीकी तरक्की मुतासर हो रही है। जब मुल्क जदीद तहकीक में पीछे रह जाए तो नई इजादात, सनअती जिद्दत और टेक्नोलॉजी की तरक्की भी महदूद हो जाती है। बीरूनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है जो मौशी खुदमुख्तारी को भी मुतासर करता है। तालीम का मयार भी तहकीक के फुकदान से मुतासर हो रहा है। जब तालीमी इदारे तहकीक और तख्लीकी सोच को फरोग न दे तो तलबा में जिद्दत, तनकीदी फिक्र और मसला हल करने की सलाहियत कमजोर रहती है। इसके नतीजे में तालीम अमली तरक्की के बजाय सिर्फ डिग्री के हसूल तक महदूद हो जाती है। सेहत, ज़राअत, माहौलियात और तवानाई जैसे अहम शोबे भी तहकीक की कमजोरी के बायस मसाइल का शिकार हैं। मकामी सतह पर तहकीक न होने के बायस कौमी मसाइल के देरपा और मौसर हल सामने नहीं आ पा रहे। यही वजह है कि कई शोबे जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक तरक्की नहीं कर पा रहे। तहकीक के कमजोर कल्चर ने नौजवान नस्ल की फिक्री तरक्की को भी मुतासर किया है। पाकिस्तान में नौजवानों में सवाल करने, नए ख्यालात पेश करने और तख्लीकी अंदाज में सोचने का रुझान महदूद हो रहा है। इस सूरत हाल में इख्तरा और इल्मी तरक्की का अमल सुस्त पड़ता जा रहा है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी जामियात और तहकीकी इदारों की कमजोर पोजीशन भी इसी मसले की अकासी करती है। आलमी सतह पर तहकीक को तरक्की का अहम पैमाना समझा जाता है, मगर तहकीकाती सरगर्मियों की कमी के बायस पाकिस्तान इल्मी मैदान में मतलूबा मकाम हासिल नहीं कर पा रहा। तहकीक के फुकदान ने रियासती पॉलिसी साजी को भी मुतासर किया है। जब पॉलिसियों की बुनियाद मजबूत तहकीक, एदाद शुमार और तज्जिये पर न हो तो फैसले ज्यादातर वक्ती नवियत के होते हैं। इससे तवील मुद्दती कौमी मनसूबा बंदी कमजोर पड़ जाती है। पाकिस्तान में तहकीक के फुकदान और तरक्की की रुकावटें एक ऐसे निजामी बहरान की निशानदेही करती है जो तालीम, मईशत, टेक्नोलॉजी और कौमी तरक्की को बेक वक्त मुतासर कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान कई शोबों में अपनी मुकम्मल सलाहियतों के बावजूद मतलूबा तरक्की हासिल नहीं कर पा रहा और आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। सामीन, आज जुम्मतुल मुबारक है, आइए समाप्त करते हैं ये हमदे बारी ताला।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क के तौर पर जाना जाता है, जहां मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। दही आबादी की अक्सरियत का रोज़गार, आमदनी और तर्ज जिंदगी बराह रास्त ज़रई शोबे पर मुनहसर है। इसके बावजूद हालिया बरसों में ज़रई जवाल और दही मईशत के मसाइल शिदत इख्तियार करते जा रहे हैं। पैदावार में कमी, बढ़ती हुई लागत, पानी की किल्लत और मौशी अदम इस्तेहकाम ने किसानों और दही इलाकों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है, जिसके असरात कौमी मईशत पर भी नुमाया तौर पर जाहिर हो रहे हैं। समिन, ज़रई जवाल की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। पाकिस्तान में आबादी में इजाफा, मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल के नाकस इंतजाम के बायस ज़रई शोबा शदीद दबाव का शिकार है। नहरी निज़ाम की कमज़ोर हालत, पानी की कमी और बारिशों में गैर यकीनी सूरत हाल फसलों की पैदावार को मुतासर कर रही है। कई इलाकों में किसान पानी की अदम दस्तियाबी के बायस फसलें उगाने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। ज़रई अखराजात में मुसलसल इजाफा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। खाद, बीज, ज़रई अद्वियात, बिजली और ईंधन की कीमतों में इजाफे ने काश्तकारी को महंगा कर दिया है। छोटे किसान महदूद वसाइल के बायस इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके नतीजे में उनकी आमदनी और मौशी हालत मजीद कमजोर हो रही है। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और सहूलियात की कमी भी ज़रई जवाल का सबब बन रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक जदीद मशीनरी, तहकीक और साइंसी तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार में इजाफा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कई देही इलाकों में अब भी रिवायती तरीक़ेकार से काश्त राइज है। इस फर्क के बायस ज़रई पैदावार और आलमी मयार के मुताबिक तरक्की नहीं कर पा रही। ज़मीन की गैर मसावी तकसीम भी देही मईशत के मसाइल में अहम किरदार अदा करती है। बड़े ज़मींदार ज़्यादा वसाइल और सहूलियात तक रसाई रखते हैं, जबकि छोटे किसान महदूद ज़मीन और कम सरमाया के बायस मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इस सूरत हाल में देही मुआशरे में मौशी अदम मसावात मजीद बढ़ रही है। ज़रई शोबे में हकूमती पॉलिसियों के अदम तसलसल ने भी मसाइल को गहरा किया है। किसानों को अक्सर कीमतों, सब्सिडी और ज़रई सहूलियात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। इसके नतीजे में किसान मौशी तहफ़ से महरूम महसूस करते हैं और ज़रई शोबे पर इनका एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी भी मईशत को मुतासर कर रही है। सेहत, तालीम, सड़क, महदूद से नौजवान देहात छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे देही मईशत और ज़रई सरगर्मियां मजीद कमजोर हो रही है। ज़रई जवाल के असरात सिर्फ देही इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि कौमी मईशत पर भी नुमाया असर डाल रहे हैं। ज़रई पैदावार में कमी, खुराक की किल्लत, महंगाई और बरामदात में इजाफे है भी मुतासिर हो रही है। समीन, देही गुरबत भी इस बहरान के बायस शिदत इख्तियार कर रही है। महदूद आमदनी, कर्जों का बोझ और ज़रई नुकसान किसानों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। कई खानदान बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिससे देही मुआशरे में बेचैनी और अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। समीन, ज़रई जवाल नौजवान नस्ल को भी मुतासर कर रहा है। देही इलाकों के नौजवान ज़राअत को गैर मुस्तकम और कम मुनाफा बख्श शोबा समझने लगे हैं, जिसके बायस इनकी दिलचस्पी इस पेशे से कम हो रही है। ये रुझान मुस्तकबिल में ज़रई शोबे के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली ने भी ज़रई मसाइल को शदीद तर बना दिया है। गैर मामूली बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और दर्ज हरारत में इजाफा फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसान मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी मौशी मुश्किलात मजीद बढ़ रही है। ज़रई तहकीक और रहनुमाई के कमज़ोर निज़ाम ने भी पैदावार और मयार को मुतासर किया है। कई किसान जदीद मालूमात, बेहतर बीज और साइंसी तरीकों से मुकम्मल तौर पर आगा नहीं, जिसके बायस ज़रई तरक्की की रफ्तार महदूद रहती है। ज़रई जवाल और देही मईशत के मसाइल एक ऐसे बहरान की अकासी कर रहे हैं, जो सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं, बल्कि कौमी मईशत, खुराक के तहफ्फुज़ और समाज

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामीन, पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त तेजी से बदलते हुए समाजी, मुआशी और सकाफती हालात से गुजर रहा है, जिसके असरात आवाम की जहनी सेहत पर नुमाया तौर पर जाहिर हो रहे हैं। रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल, मौशी दबाव, समाजी तवक्कोआत और गैर यकीनी सूरत हाल ने नफसियाती दबाव में मुसलसल इजाफा कर दिया है। माजी में जहनी वसाइल को महदूद सतह पर देखा जाता था, मगर अब ये मसला हर उम्र, तबके और तबको फिक्र के अफराद को मुतासर करता दिखाई दे रहा है। नौजवान, तलबा, मुलाजमत पेशा अफराद, खवातीन और बुजुर्ग सब मुख्तलिफ नवियत के जहनी दबाव और बेचैनी का सामना कर रहे हैं। सामीन, दबाव, बेरोजगारी, कम आमदनी और बढ़ते हुए अखराजात ने आम शहरी की जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। मुतवस्त और कम आमदनी वाले तबकात मुसलसल माली दबाव का शिकार है, जहां रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल महसूस होने लगा है। यही मुआशी बेयकीनी जहनी परेशानी, खौफ और बेचैनी को बढ़ा रही है। तालीमी दबाव भी नौजवान नस्ल में नफसियाती मसाइल को बढ़ा रहा है। इम्तिहानात, नंबरों की दौड़, करियर के खदशात और वालदैन और माशरे की बुलंद तवक्कोआत तलबा को मुसलसल दबाव में रख रही है। कई नौजवान नाकामी के खौफ, मुकाबले की फिजा और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जहनी थकन और इज़्तिराब महसूस कर रहे हैं। सामिन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने भी नफसियाती दबाव में अहम किरदार अदा किया है। मुसलसल मुआजना, दिखावे की सकाफत, गैर हकीकी तर्ज जिंदगी और ऑनलाइन तनकीद लोगों की जहनी कैफियत को मुतासर कर रही है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियों और आसाइशों को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगती है, जिससे एहसास महरूमी और मायूसी बढ़ रही है। खानदानी निजाम में तब्दीलियां भी जहनी दबाव की एक अहम समाजी वजह बन रही है। मुश्तरका खानदानी निजाम कमजोर हो रहा है और अफराद में जज्बाती फासले बढ़ रहे हैं। मसरूफ तर्ज जिंदगी, घरेलू तनाजात और बाहमी राबतों में कमी के बायस कई लोग तन्हाई और जज्बाती अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो रहे हैं। सामिन, शहरी जिंदगी का दबाव भी इस मसले को मजीद गहरा कर रहा है। बड़े शहरों में ट्रैफिक, आलूदगी, मसरूफ मालूमात, महदूद वक्त और समाजी मुकाबले की फजा जहनी सुकून को मुतासर कर रही है। लोग मुसलसल तेज रफ्तार जिंदगी के दबाव में रहते हैं, जिसके बायस जहनी थकन और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। सामिन, पाकिस्तान में समाजी अदम बर्दाश्त और बढ़ती हुई बेयकीनी भी नफसियाती मसाइल को फरोग दे रही है। सियासी कशीदगी, माशरती तकसीम, जराइम और अदम तहफ्फुज के एहसास ने अवाम में खौफ और इज़्तिराब को बढ़ा दिया है। मुसलसल मनफी खबरों और कशीदा माहौल के बायस पाकिस्तान में जहनी सुकून मुतासर हो रहा है। नफसियाती दबाव के असरात नहायत वसी है। सबसे पहले अफराद की जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। बेचैनी, डिप्रेशन, नींद की कमी, गुस्सा और जहनी थकन जैसे मसाइल आम होते जा रहे हैं। ये मसाइल रोजमर्रा जिंदगी, तालीम और पेशावराना कारकर्दगी पर भी असर डाल रहे हैं। कई खानदान मुआशी और जहनी दबाव के बायस अंदरूनी कशीदगी का शिकार दिखाई देते हैं। नौजवान नस्ल में मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी भी बढ़ रही है। बेहतर तालीम, रोजगार और मुस्तकम जिंदगी के ख्वाब जब हकीकत से टकराते हैं तो मायूसी पैदा होती है। यही वजह है कि कई नौजवान जहनी दबाव, नाउम्मीदी और समाजी बेहिसी का शिकार हो रहे हैं। सामिन, पाकिस्तानी मुआशरे में जहनी सेहत के मसाइल को अब भी संजीदगी से कबूल नहीं किया जाता। बहुत से लोग नफसियाती मसाइल को कमजोरी या समाजी बदनामी समझते हैं, जिसके बायस मुतासरा अफराद खुलकर मदद हासिल नहीं कर पाते। पाकिस्तान के कई इलाकों में मुनासिब नफसियाती इलाज, रहनुमाई और आगाही मौजूद नहीं, जिसके बायस लोग बरवक्त मदद से महरूम रह जाते हैं। मीडिया और खबरों का मनफी माहौल भी जहनी दबाव में इजाफा कर रहा है। जराइम, हादसात, सियासी तनाजात और मौशी बहरानों की मुसलसल खबरें अवाम में बेचैनी और खौफ को बढ़ा रही है। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नफसियाती दबाव और इसकी समाजी वजूहात एक ऐसे बहरान की अकासी कर रही है, जो फर्द, खानदान और पूरे माशरे को मुतासर कर रहा है। सामीन।

यही वजह है कि पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त जहनी दबाव, बेचैनी और जज्बाती अदम इस्तेकाम जैसे मसाइल को पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है। सामीन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नातिया कलाम।

0: इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 शाम नश होता है।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। सामिन रात के 8:30 होने वाले हैं। अब पेश है गोजरी मौसीकी।

0: ਛੱਡੋ ਪਰ ਪਰ
1: ਲਸੇ ਪਲਾ
0: ਛੱਡੋ ਪਰ ਪਰ
1: ਲਸੇ ਪਲਾ
0: ਮੱਛੀ ਮੁਰਗ
1: ਕਬਾਬ ਖਲਾ
0: ਮੱਛੀ ਮੁਰਗ ਕਬਾਬ।
2: अभी आप सुन रहे थे गोजरी मौसिकी, ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। सामने 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें और 9:30 पर प्रोग्राम करंट अफेयर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: सामरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन कार्य तंत्र चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल

जनंतर दो बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर टू का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तश्वीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और LPG का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल LPG के सफिशियंट

0: स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशियंट इन्वेंट्रीज टाइड अप हैं। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखिर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज़ सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज़ उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और जेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की ज़रूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ जर्रई मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज़्ज़म और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुदमुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए